0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: चोर।
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम।
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम, जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम
1: बंडलवान।
2: लड़के मिलन गीत गाता चल,
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम।

0: चोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबान
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।